0: Your news from here
1: and hits from home. SBS South Asian.
2: बड़े कमबख्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो. बड़े कमबख्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो. अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा.

जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं, तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज़ औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

SBS South Asian. Your news from here and hits from home.

0: SBS South Asia.
1: Your news from here and hits from home.
2: चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

JJ.

मतलब देख लो, गगन जी का मैसेज आया क्योंकि वो आरसीबी टीम नू लाइक कर देने, उन्हां दी फेवरेट टीम है। और इधर सिमरन जी हरौण ते लगे हुए ने आरसीबी नू, सो लेट्स सी अगले साल केड़ी टीम जीतदी है। फिलहाल तो फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा जी, कि उस दे विच किसे टीम नू सपोर्ट करदे हो वह भी तुसी दस सकदे हो। और हुण जंद जांदे आओ सुणदे हां जी सज्जन अदीप दी आवाज़ दे विच इह वाला गाणा। मैनू यानी कि पुनीत ढींगरा नू दिओ इजाजत, जुड़े रहो ते सुणदे रहो SBS पंजाबी।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर.
2: SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. मेरा नाम है नबील और आज एक नया शो, एक नया दिन और एक नई शाम. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राज के वुरुंजरी और वुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो की शुरुआत होगी ऑस्ट्रेलिया के हाउसिंग मार्केट से, जहां एक नया डेटा आया है और उसके अनुसार सिडनी और मेलबर्न में घरों की कीमतों में गिरावट देखी गई है और इसके पीछे के क्या कारण है और बाकी कुछ पहलुओं को भी हम समझने की कोशिश करेंगे. इसके बाद भारत से एक ख़ास अपडेट, जहाँ फोटो जर्नलिस्ट गीतिका तालुकदार ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए तीसरी बार एक्रेडिटेशन हासिल की है और अपने अनुभव और एक्साइटमेंट हमसे साझा किए हैं. फिर SBS एग्जामिन्स की एक खास हिस्से में बात होगी पब्लिक टॉयलेट्स की एक्सेसिबिलिटी और इनइक्वालिटी पर, कि कैसे ये एक महत्वपूर्ण अर्बन इशू बन चुका है ऑस्ट्रेलिया में. और अंत में SBS फ्लैशबैक से हम आपके लिए एक बार फिर से आज प्ले करेंगे मुंबई से एक इंस्पायरिंग कहानी, जहाँ पुराने जूते और चप्पलों को रिसाइकिल करके उन्हें दोबारा यूजेबल बनाया जा रहा है. अब तक लाखों जोड़ों को एक नया जीवन दिया आ चुका है, जिससे वेस्ट कम करने और ज़रूरतमंदों की मदद दोनों हो रही हैं. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी हमारे शो में और वो सब आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हो गया है समय न्यूज़ फ्लैश का. मंगलवार 2 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ऑस्ट्रेलिया में लगभग 30 लाख कर्मचारियों की सैलरी में 4.75% की बढ़ोतरी होगी. फेयर वर्क कमीशन ने फैसला किया है कि सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी $24.95 प्रति घंटे से बढ़कर अगले महीने $26.44 प्रति घंटे हो जाएगी. ये बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा. यूनियनों ने 6% बढ़ोतरी की मांग की थी, जबकि ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 3.5% बढ़ोतरी का सुझाव दिया था. फिर वह कमीशन के जस्टिस एडम हैचर ने कहा है कि इस फैसले का उद्देश्य जेंडर पे गैप को कम करने में मदद करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम वेतन पाने वाले कई कर्मचारी महिलाएं हैं जो कैजुअल या पार्ट टाइम काम करती हैं. ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे अमीर 20 लोग अब देश के सबसे गरीब 30 लाख परिवारों से ज़्यादा संपत्ति रखते हैं. गरीबी विरोधी संगठन यानी एंटी पॉवर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 2026 ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू रिच लिस्ट का विश्लेषण किया. रिपोर्ट में पाया गया है कि इस साल पहचाने गए 178 अरबपतियों की कुल संपत्ति $686 अरब से अधिक हो चुकी है. स्थानीय अरबपतियों की कुल संपत्ति में

0: 2025 से 2026 के बीच 25.67 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जो लगभग $49,000 प्रति मिनट के बराबर है। ऑक्सफैम ने गणना की है कि ऑस्ट्रेलिया के अरबपतियों की एक साल की संपत्ति वृद्धि से 30 लाख घरों का एक साल का किराना खर्च पूरा किया जा सकता है, 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है और देश के हर घर के एक साल के बिजली बिल का भुगतान किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 28 मिलियन तक पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की पॉपुलेशन क्लॉक के अनुसार यह आंकड़ा आज सुबह 6 बजे दर्ज किया गया। एबीएस के अनुसार अनुमान है कि देश की कुल जनसंख्या हर 75 सेकंड में एक व्यक्ति बढ़ रही है। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2028 में 29 मिलियन और 2031 तक 30 मिलियन तक पहुँच सकती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा फर्स्ट नेशन थिंकर्स, लीडर्स और बदलाव लाने वालों का सम्मेलन गोल्ड कोस्ट में चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ एबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर स्टडीज समिट में विशेषज्ञ इंडिजिनस समुदायों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस साल ये आयोजन पहली बार पूरी तरह सोल्ड आउट हो गया है। बैंकॉक में LGBTQI कार्यकर्ता थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिले एक साल से अधिक होने पर जश्न मना रहे हैं। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा करने वाला पहला देश बना था। यह अवसर प्राइड मंथ के दौरान मनाया जा रहा है। थाईलैंड 2030 में वर्ल्ड प्राइड कार्यक्रम की मेजबानी के लिए उम्मीदवार है। ऑस्ट्रेलियन डैनी लेन, जो 2 साल पहले बैंकॉक चले गए थे, SBS थाई को बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े होते समय उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ा, जबकि थाईलैंड की संस्कृति ने उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में मदद की है। और अब खबर भारत से। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिनमें 4 विभिन्न हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस और सीनियर एडवोकेट वी मोहन शामिल हैं। ये नियुक्तियां उस फैसले के बाद हुई हैं जिसमें 5 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि राष्ट्रपति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 37 पद भर जाएंगे, जबकि एक पद अभी भी खाली रहेगा। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील और न्यूज फ्लैश के बाद आइए बढ़ते हैं अपने शो की पहली रिपोर्ट की तरफ। नए आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े शहरों में घर खरीदने की कीमतें कम हो गई हैं और बात हो रही है यहाँ मेलबर्न और सिडनी की, जो ऑस्ट्रेलिया के शायद सबसे बड़े 2 शहर हैं। क्या है इसका कारण और क्या ये मौका है नए होम बायर्स के लिए? आइए जानते हैं इन्हीं सब पहलुओं के बारे में अनीता ब्रार की इस रिपोर्ट में।
1: रिसर्च एजेंसी क्वार्टलिटी के नए आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े शहरों में घर खरीदने की कीमतें कम हो गई हैं। मई में सिडनी में घरों की कीमतें 0.9% और मेलबर्न में 0.8% गिरी। ACT में भी 0.2% की गिरावट आई, जबकि दूसरे राज्यों और टेरिटरीज की राजधानियों में कीमतें तो बढ़ी लेकिन ग्रोथ पहले के मुकाबले कम थी। SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े शहरों में घरों की कीमतों में गिरावट आ रही है। पूरे देश में क्वार्टलिटी का नेशनल होम वैल्यू इंडेक्स मई महीने में फ्लैट रहा, यानी कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। दोनों ही बाजारों में पूरे 1% पॉइंट की गिरावट नहीं आई। सिडनी में घरों की कीमतों में 0.9% की गिरावट आई, जबकि मेलबर्न में ये गिरावट 0.8% थी। ये पिछले साल नवंबर में उसके साइक्लिक हाई यानी चक्रीय उच्चतम से 2-3% कम है। ACT में भी घरों की कीमतें 0.2% कम थीं। क्वार्टलिटी का कहना है कि बाकी राजधानियों में कीमतों में बढ़ोतरी तो जारी रही लेकिन ग्रोथ की रफ्तार कम हो रही है। पर्थ और डार्विन में महीने का फायदा 1.5%, ब्रिस्बेन और होबार्ट में 0.9% और एडिलेड में 0.5% रहा। कोएलिशन ट्रेजरी के प्रवक्ता टिम वेंसल का कहना है कि ये भविष्य में

0: की कमी का संकेत है।
1: The reason house prices are feeling an adjustment is because people aren't confident about their future. I'll never welcome a time where Australians feel less confident about their future.
0: Kotality ke Tim Lawless ka kehna hai ki federal budget kai factors mein se sirf ek hai. Yani kai karan hain. Unhe lagta hai ki asal mein ye pichle saal ke aakhir mein shuru hua tha aur ab isme kuch tezi aa rahi hai.
2: There's a lot of reasons for this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability challenges and serviceability pressures were starting to slow the market. But then since then, we've obviously seen 75 basis points of rate hikes. We've seen a crisis in confidence amid what's happening in the Middle East and higher fuel costs. And now we've seen the federal budget handed down, which we're expecting to be a disincentive for investment activity as well. So there's a whole range of things, but I think foundationally, this really started late last year and has been gathering some momentum.
0: ऐसी अटकलें हैं कि कीमतें 10% तक गिर सकती हैं, लेकिन ट्रेजरर जिम चार्मर्स का कहना है कि ट्रेजरी मॉडलिंग से पता चलता है कि घरों की कीमतें बढ़ती रहेंगी, लेकिन पहले से लगभग 2% अधिक धीरे। वो कहते हैं कि एक बार फिर जब हमारे हाउसिंग मार्केट में जो हो रहा है उसके लिए बजट ही अकेला फैक्टर नहीं है। उनके अनुसार हाल के महीनों में कई बार इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी देखी गई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक हालात नरम हुए हैं।
3: Obviously, I'm aware that there are a number of different forecasts about the outlook for house prices. The Treasury modelling that we provided in some detail on budget night says that the Treasury expects house prices to continue to grow, but about 2% more slowly than before. That's about $19,000 on the median house price. And so that's Treasury expectations, but I acknowledge that different organisations and different entities have different forecasts. Once again, the budget is not the only factor when it comes to what's happening in our housing market. We have seen multiple interest rate hikes in recent months. We have got a softening of economic conditions more broadly as a consequence of the war in the Middle East, and so we're seeing all of that play out.
0: हालांकि बजट में टैक्स में बदलाव ही घरों की कीमतों में गिरावट का अकेला कारण नहीं है, लेकिन टिम लॉलेस का कहना है कि इसका असर ऑक्शन क्लीयरेंस रेट पर भी देखा जा रहा है।
2: Last weekend, the early numbers came in at 54%, which was the lowest clearance rate we've seen since April of 2020, just as COVID was becoming a thing. So I think there's some clear indirect evidence that the budget's had a negative impact on sentiment, and we are expecting that'll flow through over the coming months.
0: लेकिन जिम चार्मर्स का कहना है कि क्लीयरेंस रेट पर कई फैक्टर्स का भी असर पड़ता है, जिसमें रिजर्व बैंक के रेट में बढ़ोतरी और बड़े आर्थिक हालात, साथ ही बजट में पॉलिसी में बदलाव शामिल है।
3: Some of those clearance rates were coming down already, and the budget is not the only factor when people are thinking about those participating in those auctions. But if we are making it easier for first home buyers to get a fair crack at auctions, then that's a good thing. We've only seen the preliminary numbers for Saturday. Some of those preliminary numbers have come up a bit. In other markets, they've gone down a bit. We'll see the final numbers in due course. But the budget is not the only factor when it comes to those auction clearance rates. There are other factors like interest rates, and that's why we had already seen some movement in auction clearance rates before the budget.
0: और अब जबकि घरों की कीमतें गिरने लगी हैं, तो किराए के बढ़ने की उम्मीद है। नेशनल वैकेंसी रेट 1.5% पर कम है, जिसका अर्थ है कि डिमांड ज्यादा है और संख्या में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। कोटालिटी डेटा मई में 0.6% की बढ़ोतरी दिखाता है, जो अप्रैल की संख्या के बराबर थी, लेकिन 2026 के पहले तीन महीनों की तुलना में थोड़ी कम थी। SBS न्यूज के लिए केरिन थॉमस और SBS हिंदी के लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता परार ने।
4: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, और अभी अभी अनीता बरार की आपने रिपोर्ट सुनी जो इस चीज़ पे थी कि मेलबर्न और सिडनी दो बड़े शहरों में घरों की कीमतें कम हो रही हैं, और ये एक रिपोर्ट से पता चला है। अगर आप ये ऑडियो कार्यक्रम पॉडकास्ट पे से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं sbs.com.au/hindi, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो करिए, जहाँ आपको ढेर सारा कॉन्टेंट, ऑडियो पॉडकास्ट, वीडियो कॉन्टेंट, रील्स

0: और कम्युनिटी से जुड़ी कई चीज़ें पता चलती रहती हैं। चलिए अब वक्त हो गया एक एड ब्रेक का, लेकिन एड ब्रेक से पहले आज के शो का सवाल, और सवाल वो ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि दिन बड़ा हल्का गुजर रहा होता है, मूड अच्छा नहीं होता है, कुछ करने का जी नहीं चाहता, लेकिन ऐसे वक्त में अगर कोई कॉमेडी फिल्म देख ली जाए तो फिर आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो आपकी सबसे फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है आज हमें मैसेज करके बताइए। 04397997667 हमारा नंबर है। पुरानी फिल्म हो नई फिल्म हो, हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आपकी वॉच लिस्ट क्या है, कौन सी कॉमेडी मूवी है, और इसी से शायद हम सबको भी आइडिया मिल जाए कि जो फिल्में हमने नहीं देखी हैं वो हम देखेंगे। 04397997667 आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी क्या है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलता हूँ आपको एक छोटे से एंड ब्रेक के बाद।
1: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं।
2: SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वॉइसलैंड चैनल 31 पर। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से, देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
3: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
0: एड ब्रेक के बाद हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने एड ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा था आज के शो का कि आपकी फेवरेट कॉमेडी फिल्म कौन सी है जिससे आपका मूड एकदम ताज़ा हो जाता है और आप उसे कई बार देख सकते हैं। एक मैसेज आया है क्यूरी का, वो लिखती हैं कि मेरी सबसे पसंदीदा कॉमेडी मूवी है बॉम्बे टू गोवा, उन्हें पसंद है। और आपकी फेवरेट क्या मूवी है 04397997667 पर मैसेज करके बताइए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बहुत सारी मूवीज़ पसंद हैं, पुराने ज़माने की भी, आज के ज़माने की भी, और उनमें से एक जो है वो है गोविंदा की हसीना मान जाएगी, और वो बहुत ही मज़ेदार मूवी है जो मुझे लगता है कि एक कॉमेडी में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो वक्त था गोविंदा का जब उनकी मूवीज़ में बड़ा मज़ा आता था। तो 04397997667 आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा, नाम, अपना नाम भी लिखिए और फिल्म का नाम भी, एक ऐसी कॉमेडी फिल्म का जो आपको पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए भारत की फोटो जर्नलिस्ट गीतिका तालुकदार को एक बार फिर एक्रेडिटेशन मिला है, ये उनका तीसरा मौका है। वो इस अनुभव को लेकर बेहद उत्साहित हैं और कहती हैं कि इस टूर्नामेंट का माहौल और ऊर्जा इसे बाकी खेल आयोजनों से अलग बनाते हैं। आइए इस अंश में सुनते हैं कि उनकी क्या कहानी है और उनसे बात की है SBS हिंदी के नताशा कॉल ने।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी सिर्फ खिलाड़ियों के गोल करने या जीत के जश्न की तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं होती। ये उन भावनाओं, दबाव, उत्साह और उन अनमोल पलों को कैमरे में कैद करने की कला है जो कुछ ही सेकंड में गुजर जाते हैं, और यही गीतिका

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: होते हैं तो ये एक विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है तो काफी एक्साइटेड हूँ मैं और इस बार ये तीन अलग अलग देशों में हो रहे हैं
2: जी.
1: तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट है और कोशिश करेंगे जितना हो सकता है अच्छी तरह से कवरेज करने की.
2: अच्छा, कवरेज से पहले आप किसी प्रकार की कोई स्पेशल प्रिपरेशन करती हैं जब मैच को कवर करने जाती हैं?
1: एक्चुअली हमारा जो भी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली डिमांड होते हैं न्यूज़पेपर से और एजेंसी से जो डिमांड होते हैं हम उसी के आधार पर ही सारा कुछ कवर करते हैं
2: जी.
1: और बेसिकली इंडियन साइंस यदि आप ईस्टर्न जोन में आए इंडिया में तो हम एक बहुत बड़ा फुटबॉल फॉलोइंग फैंस यहाँ रहते हैं ईस्टर्न इंडिया में तो क्रेज फुटबॉल का कोई कम नहीं है क्रिकेट से यहाँ पर
2: जी.
1: और हम लोग फुटबॉल आप यदि आते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो हम लोग बहुत ज्यादा फुटबॉल क्रेजी भी है और तो हम लोग उस हिसाब से ही कवरेज करते हैं जो कि मेगा स्टार है सभी जानते हैं रोनाल्डो मेसी ये जो टीम्स है अर्जेंटीना पोर्टुगल स्पेशली ऑल्सो एम्बाप्पे इज वन ऑफ आवर वेरी जो बड़े खिलाड़ियों में से शामिल है तो लोगों का क्रेज रहता है उनके प्रति तो हम लोग उस हिसाब से ही जो प्लेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर है डिमांड में है तो उनको ही कवरेज करते हैं
2: जी.
1: और हमारा जैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके ट्रेनिंग कैंप्स में जाने की तो हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स में जाते हैं.
2: अच्छा.
1: और वहाँ पे उनके ट्रेनिंग सेशंस हम लोग लेते हैं फिर हमारा पोस्ट कॉन्फ्रेंस होता है प्री कॉन्फ्रेंसेस होते हैं खेल के पहले वार्म अप सेशंस होते हैं उनका होता है लाइव कवरेज हम लोग स्पॉट से करते हैं और उसके बाद पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस जो पोस्ट मैचेस फोटो विजुअल हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी करते हैं.
2: अच्छा.
1: जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हम लोग वो भी करते हैं तो वो सारा कवर हम लोग को करना पड़ता है.
2: अच्छा, माहौल कैसा रहता है जो जो एनर्जी लेवल्स हैं जैसे क्रिकेट मैचेस में हम लोग महसूस करते हैं क्या वही एनर्जी इन फीफा मैचेस के दौरान भी महसूस की जाती है?
1: बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा.
2: अच्छा.
1: उससे भी डबल.
2: अच्छा.
1: उससे भी डबल और उससे भी डबल क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा क्रिकेट जो है कि वो डेफिनेटली इंडिया में लोग बहुत पसंद करते हैं और क्रिकेट जो है 7 या 8 कंट्रियों में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है. क्रिकेट को बहुत ज्यादा बाहर के लोग स्पेशली जो फुटबॉल प्रेमी जो कंट्रीज है वहाँ पे क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है तो यहाँ पे क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं गर्मियों की छुट्टी रहती है तो पूरे वर्ल्ड से पूरे विश्व से लोग इकट्ठा होते हैं फुटबॉल मैचेस को देखने के लिए तो इसका तो एक अलग ही पैमाना है इसका अलग मतलब एक होता है क्रेज स्पेक्टिकल जो भी स्पेक्टेटर्स आते हैं वहाँ पे ये अलग ही लेवल का एक क्रेज होता है
2: तो
1: ये अलग माहौल है बहुत अच्छा लगता है.
2: तो मान लीजिए आप एक मिडल ऑफ द मैच बहुत ही इंटेंस मैच चल रहा है और आप किसी को इंडियन फ्लैग पकड़े हुए देखती हैं तो लेंस किस तरफ घूमता है इंटेंस?
1: बिल्कुल घूमता है इंडियन लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही मैच बहुत ज्यादा मैच यदि उस तरीके से एक सेंसिटिव जोन में है और उस टाइम पे तो डेफिनेटली वी आर वेरी फोकस्ड ऑन that particular moment because if we lose the attention we miss that particular pictures but then Indian fans ka kya hai ki we got some time in between because jab hum log ka break session hota hai jo khel ke beech mein jo half time hota hai to we follow all the Indian fans ki kahan hai so everybody like we whenever we saw Indian flag hum log daud ke jaate hain ki
2: are
1: nahi nahi mujhe to lena hi hai. हाँ तो डेफिनेटली हमारा फोकस रहता ही है इंडियन जो फैंस वहाँ बैठे रहते हैं तो डेफिनेटली हमारा टारगेट रहता ही है कि उनके हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनका कवरेज करें.

0: वी डेफिनेटली हैव टू गेट, यू नो, हम लोग को मतलब अच्छे इक्विपमेंट्स की बहुत जरूरत होती है, तो
1: अच्छा
0: हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। हम लोग के साथ में कम से कम भी हम लोग का 3 से 4 कैमराज रहते हैं, और एक कैमरा रिमोट से भी हम लोग ऑपरेट करते हैं, और ये सारा जो है माहौल हम लोग को सेट करना पड़ता है ये जो खेल शुरू होने के कम से कम भी 2 घंटे पहले। तो हम
1: अच्छा
0: लोग वी प्रिपेयर, हम लोग को सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, सारे मैचेस तो में ही लेनी पड़ती है, क्योंकि सारे सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही हमारी एंट्री हो पाती है पिच में,
1: अच्छा
0: और वो सिक्योरिटी सारे क्लियरेंस करने के लिए हम लोग को वहाँ पे कम से कम 3 घंटे पहले मौजूद होना पड़ता है,
1: जी
0: और फिर हम लोग को हमारे सारे जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारे सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जाते हैं, फिर हमारा खुद का पूरा होल बॉडी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए वो भी स्कैन होता है, उसके बाद ही हमारी एंट्री हो पाती है। तो
1: बहुत
0: हम
1: ही
0: लोग को खेल,
1: जी
0: हाँ
1: एक बहुत ही
0: जी
1: इंटेंस आप बता रही हैं, एक फिजिकल स्टेमिना भी
0: जी
1: मेंटेन
0: जी
1: करना होता है, मेंटल शार्पनेस भी मेंटेन
0: बिल्कुल
1: करनी
0: बिल्कुल
1: होती है वो
0: बिल्कुल
1: सब शूट करने के लिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: जी,
1: बहुत
0: बहुत
1: ही
0: फोकस रहना पड़ता है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: फोकस
1: जी
0: रहना पड़ता है, और हमारे इक्विपमेंट इतने हैवी होते हैं ना कि उनको कैरी
1: जी
0: करना, फिर समर में होता है तो फिर गर्मी है, एंड देन तो ये बहुत सारे कुछ हम लोग को रखना ही पड़ता है मतलब, और साथ में हमारे सब कुछ हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स भी रहते हैं, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उसी के साथ जो भी है, जो भी कुछ हो रहा है एक्सक्लूसिव, यदि कुछ हो रहा है फिर उस पर भी फोकस रखना पड़ता है, तो ये
1: जी
0: ओवरऑल काफी हैक्टिक होता है, बट देन अगेन इट्स फीफा, तो हम लोग को अच्छा भी लगता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है।
1: गीतिका, अगर हम स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म की बात करें तो खासकर इस प्रोफेशन में पुरुष ही ज़्यादा अक्सर नज़र आते हैं, तो महिला होने के नाते आपको किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं?
0: या सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, तो उस टाइम पे जब मुझे देखे थे लोग तो वो हंसते ही थे मेरे ऊपर कि पता
1: अच्छा
0: नहीं कहाँ से आ गई, कितने दिन टिकेगी, है ना, तो मेरे यहाँ पे मैं अकेली इकलौती मतलब फीमेल थी। नाउ मेरे 20 साल पूरे हो गए
1: अरे वाह
0: इस फील्ड में, और इन 20 सालों में मेरे नॉर्थ ईस्ट से, आई थिंक स्पेशली पूरे नॉर्थ ईस्ट से मतलब जो भी है मेगा जितना इवेंट है, ओलंपिक्स, आई हैव कवर्ड 2 ओलंपिक्स, और तो ये जितने भी मेगा है वो मेरे अलावा और किसी ने यहाँ पे कवर नहीं किया,
1: जी
0: किसी मेल ने भी नहीं किया, तो उनको अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लगता है कि 20 सालों का ये सफर भी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये इतना दिन टिक जाएगी। तो
1: जी
0: शुरुआत में तो ऐसा था कि लोग हंसते थे मेरे ऊपर, तो उस वक्त लोग मुझे देखते थे कि, तो वो सोचते थे कि कैसे आ गई, तो देवे
1: जी
0: लाइक
1: जी
0: गॉसिप मेरे पीछे की, पता नहीं, क्योंकि पहले इस फील्ड में कोई आता ही नहीं था,
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी लड़कियां जो है वो मोटिवेट हो रही है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।

0: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर, देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त, या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
1: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
2: SBS Audio app, आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS Audio app एकदम मुफ्त है। इसे App Store या Google Play से डाउनलोड करें।
0: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियाँ, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो, देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
3: Like your music? We have

0: you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's a Desi dance party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
1: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS Learn में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
2: SBS Sport खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
3: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और आज के शो में हम पूछ रहे थे कि आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है और इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि किसी की फेवरेट मूवी है चुपके चुपके, वो अपना नाम नहीं लिखा है उन्होंने, बट थैंक यू फॉर योर मैसेज। और एक मैसेज आया है फ्रॉम सिडनी, शान फ्रॉम सिडनी, कहते हैं कि मुंबई एक्सप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर लाफ्स और कमल हसन और साथ में विजय राज के ये डायलॉग और एक्टिंग बड़ी पसंद आती है। तो वो मैसेज आ रहा है, विद्या लिखती हैं, हेलो नबील, माय फेवरेट कॉमेडी मूवी इज़ हेरा फेरी एंड आल्सो मेरे बाप पहले आप एंड आल्सो वेलकम वन। बड़ी सारी मूवीज़ आ रही हैं। खोसला का घोसला ये भी किसी ने भेजा है और उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, बट खोसला का घोसला मेरी लिस्ट में भी बहुत ऊपर है कॉमेडी मूवीज़ की। और कमल जी मैसेज करते हैं, जय श्री कृष्णा आपको भी और एन्जॉइंग द शो। और वो लिखते हैं कि फुकरे की जो सीरीज़ है उसमें भी बड़ा मज़ा आता है कॉमेडी मूवी में। तो आपका क्या आइडिया है, कौन सी मूवी है? 04397997667 पर मैसेज करिए और बताइए कि आपको कौन सी कॉमेडी फिल्म पसंद है जिससे आपका जो मूड है वो मज़ेदार हो जाता है और वो एक ऐसी मूवी है जो आप कई बार देख सकते हैं। 04397997667 हमारा नंबर है। और एक गाने का वक्त हो गया है, गाने के बाद वापस आएंगे, एक रिपोर्ट सुनेंगे और रिपोर्ट के बाद फिर से गाने आपके लिए प्ले करेंगे। सुनते रहिए SBS हिंदी।

0: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना अभी लापता लेडीज़ मूवी जो है उसका गाना सजनी रे, और आज के शो का सवाल ये चल रहा है कि आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है, और बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, चुपके चुपके और घोसला का घोसला, फुकरे की सीरीज़ और हसीना मान जाएगी, कई सारे ऑप्शन आए हैं, कई मैसेजेस आए हैं। और एक और मैसेज आया ज़फ़र जी का, वो लिखते हैं कि मेरी फेवरेट कॉमेडी मूवी है अंदाज अपना अपना। मुझे लगता है ये एक कल्ट क्लासिक है जो हर जनरेशन के लोगों ने देखी है और बड़ी पसंद आती है लोगों को, और इसके डायलॉग्स में वो आज के दौर में मीम भी बनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस भेजने का। 04397997667 हमारा नंबर है, आपके मैसेज का भी इंतज़ार रहेगा कि आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है। और अब आगे बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। ये है SBS एग्जामिन्स की एक खास रिपोर्ट। क्या आपने महसूस किया है कि पब्लिक प्लेस में पब्लिक टॉयलेट ढूंढना मुश्किल होता हो जाता है, साथ ही पब्लिक टॉयलेट में असमानता यानी इनइक्वालिटी भी साफ तौर पर दिखती है। SBS एग्जामिन्स के इस एपिसोड में आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। आइए तो सुनते हैं अनीता ब्रार की ये रिपोर्ट।
1: हम सब ने अनुभव किया है कि पब्लिक टॉयलेट ढूंढना तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन कई बहुत से लोगों के लिए ये उससे भी कहीं अधिक होता है।
2: A toilet becomes something that I think we all take for granted, but for a person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life of, that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
1: ये थे एडवाइजरी ग्रुप स्ट्रीट केयर के एंथनी पियर्स। पिछले साल पब्लिक टॉयलेट पर न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट की जांच की पब्लिक हियरिंग में बोलते हुए, और ये हैं उनके साथी डेविड स्ट्रेटफील्ड।
3: They're very hard to find after say 9 o'clock at night. That's why I slept at Central Station, because the doors were open all day. So you didn't want to get a charge, you know, doing your business in public. So you sort of slept near it where the toilet was.
1: अपनी तरह की पहली जांच में अलग अलग ग्रुप के लोग एक साथ आए ताकि वे अपने अनुभव शेयर कर सकें कि पब्लिक टॉयलेट तक कम पहुंच उनके जीवन पर कैसे असर डालती है। कंट्री विमेन एसोसिएशन की जूडी फिंडले ने सुनवाई में कहा,
4: If you were traveling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In Western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all. And this is per the National Public Toilet Map.
1: तो SBS Examines के इस एपिसोड में सवाल ये कि पब्लिक टॉयलेट्स में कैसे असमानता दिखती है, और मैं हूँ अनीता बरार। कैथरीन वेबर एक पब्लिक टॉयलेट एडवोकेट और रिसर्चर हैं। वो पब्लिक टॉयलेट से जुड़ी वर्जनाओं, डिजाइन, पॉलिसी और कानूनी रुकावटों की एक्सपर्ट हैं। उन्होंने SBS Examines को बताया कि हालांकि ऑस्ट्रेलिया कई दूसरे देशों के मुकाबले अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ कानूनी फ्रेमवर्क की कमी है।
5: So while we have building codes that regulate how many toilets need to be included within buildings, when we leave the building, we don't have any standards that say how many public toilets we need to provide either per person or per kilometer. And we also don't have any legislative requirement on a level of government or an agency that says you are responsible for providing public toilets.
1: यानी इसका अर्थ है कि local सरकारों द्वारा दिए गए public toilets आसानी से बंद किए जा सकते हैं।
5: There isn't a legislative requirement that says they are part of the public space network or they're part of our public transport network. So if there is any conflict between user groups or if it becomes very expensive to operate, it can be easier to close a public toilet than to ensure continued access.
1: Jeremy Hope, People with Disability Australia के अध्यक्ष और Specialist Disability Accommodation Alliance के CEO हैं।
6: The further you get away from a capital city, the harder it is to go to the bathroom. And what is accessible is old. Often the gradients are really hard to get into the bathrooms. The grab rails aren't overly helpful.
1: एक full-time worker, user और autistic बच्चे के पिता होने के नाते उनका कहना है कि आसानी से मिलने वाले toilets बहुत आवश्यक।
6: The amount of times I go racing looking for a toilet, whether that's out at a business lunch, whether that's at the airports, and

0: Some of the difficulty is to be able to go to the toilet in dignity, to be able to have somewhere private that is accessible, that is safe. For me, it means that I can navigate my wheelchair and my walker.
1: Julian Lawrence, People with Disability Australia में Senior Policy Officer हैं। उन्होंने कहा कि उनके संगठन को अक्सर विकलांग लोग बताते हैं कि अपना पूरा दिन पब्लिक टॉयलेट्स की उपलब्धता के हिसाब से प्लान करना पड़ता है।
2: Actually, you cut meetings short, you cut outings short, you miss family events, you turn down work opportunities. So it's a big issue, yeah. It's not just about convenience. It's literally about whether you can take part in everyday life.
1: अब एलिस्टर एक आदिवासी ट्रांस विकलांग महिला हैं। पहले वो सुरक्षा के मामलों से पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने से बचती थीं।
3: And it would come to situations where I had to make the decision between do I go to the women's bathroom and risk getting transphobic rhetoric, or do I go into the guys' bathroom and put myself at risk of violence? I did have at least one where I was getting so much hate that I just decided to use a men's room once, and then because I did that and looked feminine enough, I received physical violence.
1: Dr. Sasha Whaley, University of Melbourne mein Center for Youth Mental Health mein research fellow hain. उन्होंने SBS Examines को बताया कि कई ट्रांसजेंडर लोगों को पब्लिक टॉयलेट को लेकर चिंता होती है और अगर हो सके तो वो उससे बचते हैं। ऑस्ट्रेलिया में LGBTQI+ युवाओं पर हुई एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि युवा ट्रांसजेंडर लोगों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में हर चार में से एक व्यक्ति को कॉन्टिनेंस की समस्या है, जिनकी संख्या 7 मिलियन से अधिक है। कॉन्टिनेंस हेल्थ ऑस्ट्रेलिया हर साल ग्रेट टनी हंट चलाता है, जिसमें लोगों को नेशनल मैप में पब्लिक टॉयलेट जोड़ने की अपील की जाती है, ताकि दूसरों को देश भर में मौजूदा सुविधाएं ढूंढने में मदद मिल सके। अब इसमें 25,000 से अधिक सुविधाएँ रजिस्टर्ड हैं। ये हैं कॉन्टिनेंस हेल्थ ऑस्ट्रेलिया के CEO Jim Cooper.
4: What it's turned into is this general purpose fantastic directory, and people who are travelling use the map. Tradespeople, disabled people, emergency services, police, Uber drivers, and also everyone who has continence challenges, and the purpose of the National Public Toilet Map and the Great Dunny Hunt, where we add more toilets every year, is to help those people with incontinence in particular.
1: Researcher Catherine Bever का कहना है कि हम सभी को public toilets पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि ये बराबरी और सम्मान को भी दिखाते हैं।
5: As part of the United Nations, we have a right to water and sanitation, which equates to the right to public toilets. Therefore, it is important that our cities and our planners and our architects and our builders are responding to that right by providing adequate and accessible public toilets.
1: लेरा श्वेत्स की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता बरार ने।
6: SBS On Demand पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS On Demand ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियाँ। SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
7: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं।
6: दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए सातों दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
7: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं।
8: SBS हिंदी पर वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है नबील और अब वक्त हो गया है एक गाने का, लेकिन गाने से पहले आज जो सवाल है उसके जो जवाब आ रहे हैं वो पढ़ लेते हैं। आज हमने सवाल पूछा था कि आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है, और इस वक्त हमारे पास कई सारे मैसेजेस आए हैं। नए मैसेजेस में कुछ लोगों ने लिखा है पड़ोसन और अंगूर, और कमल जी ने भी दो थ्रिडनी से मैसेज किया, दो तीन ऑप्शन लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि तेरे बिन लादेन और फंस गए रे ओबामा, ये बड़ी मज़ेदार मूवीज़ हैं जो वो ज़रूर देखते हैं, और चाची 420 तो मुझे लगता है एक ऐसी मूवी है जो कई लोगों ने देखी होगी। और गणेश मेलबर्न से लिखते हैं कि धमाल इज़ माय फेवरेट मूवी। तो बहुत सारे आज जवाब आए हैं और इनमें से हमें भी आइडिया मिल जाएगा कि वीकेंड पे कौन सी मूवी देखी जाए। और आपको भी अगर कोई रिकमेंडेशन है तो 04397997667 पर मैसेज करके बताइए कि आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है। और इस वक्त प्ले करेंगे आपके लिए एक गाना, और गाने से वापस आकर एक आखिरी रिपोर्ट आज की, और फिर एक और गाने से अंत करेंगे आज के शो का। एंजॉय करिए।

SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब शो के अंत में हम लोग पहुंच गए हैं, एक आखिरी रिपोर्ट सुन लेते हैं। और SBS फ्लैशबैक से ये रिपोर्ट हम आपके लिए एक बार फिर से प्ले कर रहे हैं। ये कहानी है भारत से, जहां मुंबई में रमेश और शेयंस पुराने जूतों और चप्पलों की को रिसाइकिल करके उन्हें फिर से पहनने लायक बनाते हैं। और अब तक वो लाखों जोड़े तैयार कर चुके हैं, जिससे ज़रूरतमंदों को

0: सस्ते विकल्प मिलते हैं और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। आइए सुनते हैं SBS फ्लैशबैक से एक बार फिर फैसल फरीद की ये रिपोर्ट।
1: मुंबई में उत्तराखंड के एक युवक रमेश धामी बॉलीवुड में किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। वो बॉलीवुड से इतर प्रोफेशनल एथलीट बन गए, मैराथन में भाग लेने लगे। उसके बाद किस्मत ने एक टर्न और लिया। अपनी प्रैक्टिस के दौरान उनकी मुलाकात श्रियान से होती है, जो अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे, और यहीं पर एक नए आइडिया ने जन्म लिया। आइडिया था पुराने जूतों को नया करके ज़रूरतमंद तक पहुँचाना। ऐसे बच्चे जिनके पास पहनने को अच्छे जूते नहीं हैं, या फिर ये फेंके हुए जूते नष्ट करने की प्रक्रिया में प्रदूषण को और बढ़ावा देते हैं, इन दोनों बातों को समझना। आमतौर पर लोग साल भर में 2-3 जोड़ी जूते फेंक ही देते हैं। रमेश और श्रेयंस ने यह सोचा कि अगर ये सब जूते कैसे भी इकट्ठा करके उनको नष्ट न किया जाए, बल्कि उनको किसी के पहनने लायक बना दिया जाए। आइडिया सिंपल था और इसी पर उन्होंने काम किया, और धीरे धीरे उन्होंने लाखों जूते अपसाइकिल कर डाले। आज उनके पास बहुत से कॉरपोरेट सहयोगी हैं, जहां पर लोग उनको जूते डोनेट करते हैं, लोग खुद भी अपने पुराने जूते उनको देते हैं। इसके अलावा अब ये अपनी संस्था ग्रीन सोल फाउंडेशन के तहत जूते इकट्ठा करके उनको पहनने लायक बनाते हैं। कैसे ये सब शुरू हुआ, रमेश इस बारे में SBS को बताते हैं।
2: मेरा नाम रमेश धामी है, मैं फाउंडर हूँ ग्रीन सोल को। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। 2007 में मुंबई आया था हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए। एक्टर नहीं बना, ऐसे छोटे मोटे काम करता था। फिर मुझे साथी संस्था के लोगों से मिला, उन्होंने बोला कि हमारे संस्था में आइए, खाना पीना रहना सब फ्री है, अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं। तो वहाँ ज्वाइन किया मैंने, फिर वहाँ रहता था ऐसे। फिर वहाँ उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसा स्पोर्ट्स करना है, क्या बोला हाँ करना है। तो मैराथन ज्वाइन किया मैंने। मैराथन से करते करते मैं अलग अलग बहुत मतलब ऐसे अलग अलग मैराथन भागा, तो वहाँ से रियलाइज हुआ कि मेरे हर साल 4 से 6 पैर खराब हो रहे हैं, जूते जो खराब हो रहे हैं, जल्दी खराब मतलब सोल जल्दी खराब नहीं होते थे पर साइड से फट जाते थे। और नाइकी प्यूमा ऐसे बड़े ब्रांड, अच्छे ब्रांड और महंगी, मेरे को तो स्पॉन्सर के थ्रू मिलते थे साथ ही ऐसे। तो और मैंने PDB ज्वाइन किया, और PDB में साबिर सर करके उन्होंने हमको कोचिंग कराया, और श्रियांश भी आता था, तो श्रियांश भी एक सेम कोच था, तो साथ में वर्कआउट रनिंग करते थे। तो श्रियांश भंडारी मिलते थे, हाई होलो ऐसे होते थे हमारे, मिलते थे ऐसे हाई होलो कैसा चल रहा है, एक दूसरे के बारे में ऐसे बात पूछते थे क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। तो बड़ा ही पूछ रहा हूँ मैं रनिंग के बारे में, मैं ऐसा ओलंपिक खेलना चाहता था इंटरनेशनल, बट आई थिंक मैं इतना कुछ कर नहीं पाया उतना। पर नेशनल प्लेयर हूँ, मैं 300+ मैराथन भाग चुका हूँ, और मेरे जूते हर 4 से 6 पर इसलिए ज़्यादा ख़राब होते थे क्योंकि मैं हफ्ते का 200 से 250 किलोमीटर रनिंग करता था, जिससे साइड में पड़ जाते थे जो जूते, जल्दी ख़राब इसलिए होते थे 6 पर। और मुझे लगा कि इतने जूते ख़राब हो रहे हैं, तो फिर मैं सोचा कि कुछ ना कुछ मैं करूँगा ऐसा जूते, जूता बनाऊँगा करके मेरे माइंड में था। और एक बार श्रियांश का कॉल आया कि रमेश तुम्हारे पास कुछ ऐसा आइडिया है जिससे हम टाटा रिलायंस ऐसी कंपनी बाई करती और वो कंपनी करते हैं इसको। मैं बोला ठीक है, मेरे पास है आइडिया 3 है, जिसमें कपड़ा और खाना जो वेस्ट होता है ऐसे फेंक देते हो, और तीसरा जूता है। बोला यार रमेश जूता वाला अच्छा है, तो जूता वाला अच्छा है। तो मेरा जूता इसलिए था कि मेरे एक बार जूता मंगाया था US से, वो जूता जल्दी ख़राब हो गया, क्योंकि मेरा टारगेट था उससे मैं 30 से 40 हज़ार रुपये कमाऊँगा, तो उससे 3 हज़ार रुपये भी नहीं आए मेरे। मैंने $100 का जूता मंगाया था 2012 में, तो जल्दी ख़राब होगा, तो इसलिए मेरे को बहुत मुझे दुख हुआ। तो मैं चप्पल भी फेंकना नहीं चाहता था, वो जूता बहुत ही अच्छा वो था, सोल अच्छा था पर साइड से पड़ गया। तो उसको मैंने जूता बनाने की कोशिश किया, जूता तो बना नहीं, फिर वो जूता बना नहीं, तो फिर मैंने उसको हटा दिया ऊपर, रिटर्न चप्पल में कन्वर्ट के चप्पल बना के यूज कर रहा था, और लोग सब देख रहे थे, अच्छा लग रहा था, लोग मजा, कई लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, कई लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे, मेरे कोच ने भी बहुत अच्छा बोला, श्रियांश ने भी बोला बहुत अच्छा आइडिया है। पैसे तो ऐसे मिलते थे कभी कभी ऐसे ही करके। तो फिर उसने एक बार कॉल आया श्रियांश का कि रमेश तुम्हारे कुछ ऐड कॉल आया कि हम ऐसे अप्लाई करते हैं। बोला ठीक है, तो हमने पहला अप्लीकेशन किया था जय हिंद कॉलेज, सेकेंड हमने रायसोनी कॉलेज, IIT, ED, ID

0: अहमदाबाद, ऐसे कंपटीशन में अप्लाई करके हमने मोलोस ऐसे कंपटीशन से हमने स्टार्ट किया ग्रीनसोल को, और अभी तक हमने ऑलमोस्ट क्रॉस इंडिया 1 मिलियन पैर डोनेट कर चुके हैं। 3 मिलियन का प्लान है अभी डोनेट के लिए, और हमारे 100+ कॉपरेट्स हैं, कॉपरेट्स हैं 100+, और स्कूल्स, कॉलेजेस, कलेक्शन सेंटर ऐसे हैं हमारे। प्लस एक स्किल सेंटर है जहाँ पे लेडीज़, 6 लेडीज़ ने ट्रेनिंग दी है उनको, जिस वो साल का 12 से 15 हज़ार पैर बनाते हैं। और जो हमारा जो पॉलम हमने रिसर्च किया था, जो हर साल 35 करोड़ जूते फेंकते थे यूएन के डेटा के बेसिस पे, और जिसमें से 1.2 बिलियन लोगों के पास चप्पल ही नहीं है दुनिया में, बेयर फुट है, उससे बहुत सारा वो हो रहा है। और जो जूता हमारा है वो उसको होने के लिए मिनिमम 50 से 100 ईयर लगता है उसको वो होने के लिए, तो ग्लाइंड फील्ड में वो करने के लिए। तो इसके लिए हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। अभी करेंट जो डेटा है 23.5 बिलियन पेयर हर साल मैन्युफैक्चर होता है, उसमें से सिर्फ 5% रिसाइकलिंग हो रहा है, बाकी सब लैंड फिल में जा रहा है। और हम चाहते हैं कि इसको सर्कल इकोनॉमी की तरह यूज करें, प्रोडक्शन कम से कम हो, और सस्टेनेबिलिटी और इसको रिसाइकलिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपरेट, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट सभी इसको सपोर्ट करें, और इस सेक्टर को हम बड़े अच्छे लेवल में सर्कल इकोनॉमी की तरह यूज करें, और हम ब्रांड सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हम इसको ये चाहते हैं ग्रीनसोल फाउंडेशन। और हम ऑलरेडी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और भी इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, अपसाइकिलिंग कर सकते हैं, हम इस पे और काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम इसको मोर बेटर, मोर इस पे काम करना चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।
1: क्या पुराने जूते से ऐसा कुछ बन सकता है कि देखने पर पता ना चले और लोग बिना झिझक पहन सकें? जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। ऐसी चप्पलें बन जाती हैं कि बिल्कुल नई लगती हैं। अब तक 7 लाख चप्पल ये लोग बना चुके हैं। श्रेयंस इस बारे में बताते हैं।
2: तो ये जो आपने सवाल पूछा है कि जो हम पुराना रिसाइकिल करते हैं उसका, जैसे जूता रिसाइकिल किया उसका जो चप्पल बनता है वो एकदम ब्रांड न्यू दिखता है, यही हमारी रिसाइकिलिंग की खासियत है कि या अपसाइकिलिंग की खासियत है कि आप बता नहीं सकते कि नया है पुराना है। इसको हम बहुत आप कह सकते हैं क्लेवरली करते हैं ताकि बच्चों का फायदा हो, उन्हें नए जैसा जूता मिले। तो जो जूते का पुराना सोल होता है वो नीचे रहता है तो आपको दिखता नहीं है, वो हम एज इट इज पुराना सोल ले लेते हैं, पर जो अपर होते हैं या जिस पार्ट पे आपका स्किन टच होता है वो नया पार्ट होता है। फिर जो लेसेस होते हैं वो हम चप्पल में यूज़ नहीं करते, उसका साफ करके हम बैग में यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने 7 लाख से भी ज़्यादा ऐसी चप्पलें बना के डिस्ट्रीब्यूट की हैं और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है ऑल ओवर इंडिया।
1: अब कैसे जूते दिए जाएं? अक्सर हमारे पास भी ऐसे जूते हो जाते हैं जो अब हम पहनते नहीं हैं, और किसी को देने में भी झिझक महसूस होती है कि पुराने जूते क्या दें। नतीजा ये होता है कि वो जूते कूड़े के ढेर पर जाते हैं, और अगर हम वही अपने पुराने जूते दान कर दें तो वो किसी के बहुत काम आ जाएंगे। कैसे करें ये श्रेयंस बताते हैं।
2: बिल्कुल, हर एक जना अपने पुराने जूते को एक नई लाइफ दे सकता है। हम इधर उधर फेंके जूतों को या फिर हम हमारे मेड सर्वेंट को दें, या फिर हमारे पास कई बार किसी को देने के लिए नहीं होता जूता तो जूते इकट्ठा होते रहते हैं हमारे पास, इसका कोई रद्दी में भी हमें कुछ नहीं मिलता है। तो अगर हम ग्रीनसोल फाउंडेशन को ये जूते पहुंचाएं हमारी सोसाइटी से, ऑफिस से, कॉलेज से, तो इन जूतों को हम चप्पल बना के गरीब बच्चों तक पहुंचाएंगे। आप फंड्स भी डोनेट कर सकते हैं जिससे रिसाइकलिंग हो, नहीं तो हमारे पास कॉर्पोरेट फाउंडेशंस भी हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट जो इसको फंड करते हैं इनिशिएटिव को। जो आप जूते देते हैं उसकी कॉर्पोरेट हमें फंडिंग देता है इसको रिसाइकल करके बच्चों तक पहुंचाने की। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, हमारी वेबसाइट भी है greensoulfoundation.com, उस पर भी आप जा सकते हैं, एक बार पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं।
1: धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम सबको ये आदत डालनी चाहिए कि हमारे द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं दोबारा इस लायक बन जाएं कि किसी के काम आ सकें। इससे एक तो किसी का फायदा होगा, दूसरा पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। लखनऊ से फैसल फरी।
3: SBS हिंदी पर आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे लूँगा अलविदा और मिलूँगा बहुत जल्द एक नए दिन, एक नई शाम, एक नए शो के साथ। आखिर में एक मैसेज पढ़ देते हैं। जफर जी लिखते हैं कि फैसल फरीद की ये जो कहानियाँ होती हैं बड़ी मोटिवेशनल होती हैं, और कीप अप द गुड वर्क। और पब्लिक टॉयलेट पर भी जो आज हमने एक SBS एग्जामिन्स का एक अंश प्ले किया वो भी उन्हें बहुत पसंद आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी शाम खूबसूरत बनी रहे। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। सुन रही SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: कैसे हैं आप लोग?
1: एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। इनकी

जहाँ तूने है मुझको दबाया हूँ नहा तो की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ अमीरों वाला ख्वाब चाटो इनकी धूल दिखने में सुंदर ये कांटे वाले फूल

मेरा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुए, हजार रात में वह भी एक रात हुए, आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए।

Wall to Wall Music. Play now. On SBS South Asian. Yeah.

0: ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: The Bollywood Session, your daily dose of Bollywood hits.
2: Hear it at 8 a.m. and 6 p.m. every day on SBS South Asian.

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी आग लगेगी आग लगेगी।

नहीं बस एक खराबी है, आदत से नहीं।